0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभकल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभकल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में

0: हमने इस समुदाय से बात की थी और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खासतौर पर महिला किसान।
0: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरोभा जी ही काफी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरोभा जी के पास।

0: लालाजू ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी बता कहाँ बात है?
0: कहाँ बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी अब तो न आराम से बोले सो भाई बात।
0: का कह रहे ने कठिया के बोलो सो भाई बात।
1: अरे भौजी तनक हमने कही के आज आराम से बतिया लिए भौजी से बैसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू मैं जाके अभी आई थी के ने तुम मेरे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू ने तो।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ये सब कहे थे हारे के हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू मैं कह रही तो समझ लो जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बात में पढ़े लीजिए आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है बता नहीं बता दे तो।
0: कहा कह रहे लालाजू नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा भौजी के ऐसी क्या बात है तुम बता दे हारे जा भी की क्या जरूरत है।
0: अरे लालाजू अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे अच्छी सी बता दूं मैं कहा डाल लूं ई खेतन में मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं जो दवाई ले आत होंगी लेकिन इनसे कहा कोती मुझे कुछ फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है वो और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हो तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो काय में लगी हमारा नाम के
0: भी। अरे लालाजू फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
1: अरे आओ तो है ना लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा मैं तुम्हारी चलो मैं तुम्हारी खेती देखी आज तुम्हारी कैसी है।
1: हाँ मैं देखे हम तो दवाई देती अपनी ये चल रही है आजकल भी
0: ये दवाई देते ही
1: चलो देखे तो
0: चलो चलो तो पहले तुम्हारी खेती देखे आप फिर मैं अपनी देखो।
1: तो देख भाजी देख जा अभी आसो की अपनी फसल लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया लेकिन पढ़े जाने तो खेती करनी है तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी रासायनिक दवाई ये ही देखनी है तो दुकान से ले लेके
0: का कह रहे लालाजू मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही।
1: मर भी नहीं पढ़े भी जाने तो ही
0: हाँ।
1: पढ़े भी जाने तो और खेती भी करनी है संगे संगे देखो अब किसानी को गांव वाले को काम है तो सब करनी है।
0: हाँ, वो तो ये नहीं है लालाजू मैं जा कह रही तुम कहा जा रहा दिन में देखो तुझे भटन में कैसे कीरा मीरा सो लग रहा है वो और का कहते ये नहीं दुखन में आने से लग रहा है कहा जा रहा तुम।
1: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया के
0: लालाजू मैं तो जा से आई थी देखन मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रही हो मैं जय बहाने लालाजू की फसल तो देखे और कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी क्या तो ऐसी बातें कर रही कौन मेरे घर है बन नहीं दवाई अब मैं तो बाजार से लिया तो तुम यानी क्या करा था जुम्मन मैं तुम्हें देखे हूँ कैसी है तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजू तो तुम्हारी से तो अच्छी मिल जाएगी ये तो जबकि देसी दवाई में इनको इस्तेमाल करे थे मैं तो बड़े वहां से आई थी। अरे मेरे लालाजू की अच्छी उमदा हो जाए कहा पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आती हूँ।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय में दिक्कत करो जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंगे में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दो
0: रासायनिक
1: फिर
0: बाकी तो
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकरी रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी क्या तो ऐसी बात कर रही जैसे तू अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ मामे कहा सके वो
1: कहा घरे बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घरे बनाऊ तो और अपनी बैगन में वो चैंगन सी फसल में अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी
0: कहा कह रहे लालाजू काय को मस्करी कर रही तो मस्करी दिखा रही
1: और कई तरह के घरे बना दवाई बना वो हासी के
0: हाँ लालाजू मैं

0: जिनसे उम्दा दवाई बनाते हैं रासायनिक दवाई, जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना ली होंगी।
1: अब तो वही चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: कैसे चल, देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: उन्हें ये कहो कीड़ा लगो कीड़ा के लाने जाना बहुत हो, तो मैं मुझे तो विशेषक बुला ले मैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊं मैं, जो अपनी चीजें है प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो अब तो चला ही नहीं आए त्योहार,
0: चलो देखो अभी देखो लाला जी जो तो लगो मेरे बैगन और जी अभी मेरे टमाटर की पौधे सुबह लगा दे।
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहाँ कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी तुम्हारी उम्दा हो जे, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी है, मैं तो इतनी घरे बना था अपनी सब।
1: लेकिन भोजी जी टपक जाएंगे मटका धरे जे का ही धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे,
1: लोटा नहीं रे मटका धरे बट तू टपज्जा में।
0: हाओ लाला जी में मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: वह कैसी बनाता
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वो हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादें बनी।
2: अच्छा
1: लेकिन मैंने जैसू जी नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सका थे, तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी ने तो जरूर सीख भी आओ जो दवाई बना।
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है, उसमें अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
3: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है, आपके हिसाब से क्या लगता है लाभ क्या है?
3: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, उड़द हो गए, चना, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
1: जी जैविक खेती के उत्पादन।
3: हाँ हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
1: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
3: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी है, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
1: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
3: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
4: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा नवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
1: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
4: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो पता है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाती है उससे। अच्छा, जो गोबर खाद से

0: खाद से बढ़ती है वाला आय,
1: आय बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
0: ऐसे है कि जब खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
1: अच्छा
0: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल बढ़िया टुकड़ाई चलेगी उसकी।
1: धन्यवाद।
2: ब्रजकिशोर कुशवाहा।
1: अच्छा ब्रजकिशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
2: हमें पता नहीं है,
1: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
2: नहीं है जानकारी।
1: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
2: अब जी हमें पता नहीं है सर।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद।
5: जीवन भर सुख

पर्यावरण को शुद्ध बनावे सुलावई अरे लावई हाँ लावई लावे हमें बेटी जा जीव के खेती।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे यहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते। जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको

0: बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी।
1: जी
0: ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकते हैं। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा, और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विषय विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है,
1: जी
0: क्योंकि इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर। तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये
1: जी
0: सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
1: बिल्कुल
0: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थायी कृषि अपनानी होगी, और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा
1: फायदा
0: नहीं
1: नहीं है।
0: दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
1: सर, आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात करें और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, सर, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
0: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारी जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा है खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातु है, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी है रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
0: जी, इसके अनेक लाभ हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखा देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा।
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत

0: जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर,
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छी तरीके से जो आपने एक जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हां, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे, लेकिन श्रोताओं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हाँ श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207949। श्रोताओं आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था और जिसका सही जवाब देने वाले हैं टालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
2: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
4: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारे भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तना बोलन तो दू करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब क्या तुम बात कर रहे अपने साथियों
1: नहीं, नहीं हमारे भी नमस्कार पहुंच जावे सभी श्रोता साथियों को काहे से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ वो तुम्हारा है
1: नहीं
0: हमारी क्या दू क्या दू
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचते हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: और हमें जानकारी देंगे। नहीं नहीं जो मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हमें अपने साथी इनके बीच में लेके आउ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ई बात को तो मैं बुरा लगो हुज्जे सो तुम बीच में हमारी बात काटन लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होती है जब हमारे साथी हमसे जुड़के पूछते हैंगे के भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव कर रहे को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो होंगे कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सा कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ में अपन सुनाते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये यानी के केबी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करने जा रहे हैंगे तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचाते होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था ये चीज इनको सीखने में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियों में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन
0: लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं
0: हमारे फोन आ रहा है बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है बे का सलाह दे रहे हैं इसमें सुना चाहेंगे कैसे हमारे ये बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बतावो चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहे हैं फोन हम अपने साथी उनको बतावो चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसाय के बारे में या सफल व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेगी
0: अब फोन कटेगा आप काय में से उठा रहे
1: हैं चलो हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं चलो उनसे बात कर लेते हैं तो उनको हमें कराते हैं
0: तो बात तो हम नहीं करें आप खुद
1: चलो आप ही कर लेते हैं रूपा जी का फोन है आप ही बात
0: हेलो नमस्ते
2: रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं
2: हाँ
0: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा कैसे आपने उसमें अप्लाई किया कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली
2: हाँ वैसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
0: जी
2: उनसे हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम।

0: तो सी कमर में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें सीतामढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
0: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
0: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
0: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
0: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर न जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर न कहीं जाने पड़े।
1: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा जिसको कहते हैं कैसे हो जाता है?
0: वैसा हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए है, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
1: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
0: हाँ, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
0: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी, तो ऐसे ही पुराने फीस थी ना, उन्होंने सिलाए जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे हैं खान के खान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे सीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने
1: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप?
0: इसमें वही लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
1: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
0: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
1: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
0: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
1: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
0: हाँ, समूह वाले भी हैं कुछ, बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
1: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
0: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने दो पैसे गांव के भी बचे और दो पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
1: जी जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
0: परेशानी तो आती है वैसे भी
1: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
0: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं
1: जी,
0: उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
1: जी जी,
0: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
0: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है
1: जी,
0: तो हमें जानकारी हुई
1: जी। रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
0: नहीं नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
1: जी,
0: अभी चल रहे, शुरू चल रहे, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने एक महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
1: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
0: हाँ, वैसे सलवार है जी, है ब्लाउज है,
1: ये चीजें आप बना लेती हैं?
0: हाँ, यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
1: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
1: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो कोई नहीं आता, आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गाँव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिल के चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं, बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के।
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
0: कर सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाए ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: इसीलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, नहीं कि ये रह जाए, सोच गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए, अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती है, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा
0: जी। अच्छा।
1: जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, ये सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतने दूर के होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कहावार साहब, तुम तो इतनी नोनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें दिखा पहले से बिल्कुल पतो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं। हम सोच ही रहते हम कमरे में आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई दी कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके, ऐसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होतेगी कछु भी चीज को, यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे शुरुआत कर रहे तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़त है, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़त है। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई हैं, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही, वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहते सुनी क्या रे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी सुबह वो होते ना नई शुरुआत में तना एक जावे को चस्का लगो रहा थे, सो चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काय की रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उनके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उनको कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम करने लगी हैंगी। तो कैबी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उनको जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है, और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हेंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते हैं वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काय अटकती, हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जे मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तनक रुक जाओ और हमारे साथियों तनक सांस लें दो और जो लोकगीत सुनन दो रखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान देत चली जाओगी, तो हमारे साथ ही कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
1: हाँ, मतलब तुम बोलन दो सो कछु नहीं है,
2: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवात है अपने श्रोता साथियों को जो 900 गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे और अब हमें लगा थे मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकते हो गए कहेगा हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे साथी अनखों बस पूछो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैं तो अपन ये चीजें आपको बताते हैं जो बातें आपको बताते हैं चाहे वो खेती किसान जुड़ी बातचीत हो चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो चाहे वो अजीबका से जुड़ी बातचीत हो तो ये सारी चीजें जो रहेंगी सारी बातें जो रहेंगी उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में और खासतौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव देंगे तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे आपको लग रहा है वो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है वो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं
0: बिल्कुल यही प्रकार है और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से और आपको अगर कोई संपर्क करने है तो उनको लाना हमारा नंबर जो है वो
1: हाँ और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें
0: अरे मनीष भाई सुनो सुनो सुनो सुनो तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ
1: ऐप हमारे श्रोता साथी के पास
0: जानत है
1: नहीं नहीं जानत तो हैंगे और हम एक बार फिर से क्या वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पर भी उपलब्ध है वो जहाँ पर रेडियो नहीं पहुँच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से वहाँ पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है रेडियो बुंदेलखंड वहाँ भी उपलब्ध है वो और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाने हैं वो और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे बाको डाउनलोड करो और चांद इतने बैठ के हैं यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैं और अपनी ज्ञान की बात उनको सुन सकते हैं
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर ले रेडियो बुंदेलखंड को ऐप और फिर अपन जिते चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थे सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा है कि अब हमें चलन दो और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्यान्ह भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

Yeah.

सबको समझाना है, आओगे हो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है, आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक, घर से
1: पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको

0: में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत की।
0: गांव में किते किते और का काम उज्जे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिर कर क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
5: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
4: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है।

0: मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
1: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पे जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पे जो छोटी योजनाएं तैयार करते हैं, इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है या सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहां पहुंचना है ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को, जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है।
2: बिल्कुल,
1: अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के। तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
3: पंचायत की।
2: गांव में किते किते और का काम मुझे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
2: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
3: ग्राम सभा की।
2: मैं हूँ जा गाँव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने

है कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा। क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी। अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम नहीं, ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभा होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा गला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार या

ये शेर वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में, जो अकबर में नहीं है। इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। इरादे

हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा

0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और बड़ी खुशी होती है कि हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को बड़े चाह से और मन लगाकर सुनते हैं। और कुछ दिन पहले एक हमारे किसान ने हमसे अनुरोध किया था कि हमारे सभी साथियों को, किसान साथियों को मौसम आधारित जानकारी, क्योंकि मौसम आधारित जानकारी तो हम देते हैं, पूरे भारत में क्या स्थिति है पानी को लेकर, क्या मौसम कह रहा है उसको लेकर जानकारी चाहिए थी। तो हम इस आग्रह को स्वीकार करते हुए हमारे श्रोता साथियों की पसंद

0: मौसम पर इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं। मौसम आधारित जानकारियां, क्या तापमान होगा पूरे भारत में, किन किन हिस्सों में क्या तापमान रहेगा, साथ साथ में वायु का जो संकेत है क्या रहेगा, उस पर भी बातचीत होगी। साथ में हमारे किसान साथी इस बरसात के मौसम में, चूंकि बहुत सारे किसान साथी हमारे रह भी गए होंगे और जिन्होंने बुवाई भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लगभग एक महीने से ऊपर हो गया है यहाँ पर पानी यानी बरसात होते होते, और हमारे किसान साथी चूंकि बरसात थोड़ी खुलती है इसके बाद मूसलाधार बारिश होती है, जिस कारण से हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी इस मौसम की बुवाई नहीं कर पाई है। लेकिन तैयार रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम जो रबी की फसल की तैयारी करते हैं उसके लिए आपको वक्त मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, और अच्छी तरीके से उस खेती को करिएगा। जिन साथियों ने इस बार इस मौसम में खुल गया है, और जहां पर मिट्टी की अगर बात करें तो जहां पर पथरीली दोमट मिट्टी है वहां पर किसान साथियों ने मूंगफली और सोयाबीन की फसल लगा दी है, कि कहीं कहीं किसान साथियों ने अपनी धान की भी रोपाई कर दी है। तो धान में हमारे किसान साथी पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। पानी चूंकि सब्जी की अगर बात करें तो बहुत जगह पर हमारे किसान साथियों की सब्जी बर्बाद हो गई है, और जिन किसान साथियों की अपनी सब्जी की फसल वो लगाए हैं वो पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। साथ में हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक हम भेज रहे हैं, यानी बनाकर हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा, क्या भारत का मौसम भारत में कैसा रहेगा, अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा, जानते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: अरे मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संकेत है, वायु गुणवत्ता कैसी है, खेती के साथ जो कुछ जरूरी बातें, लेकिन शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से पांच बड़ी खबरें क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो पूर्व राजस्थान में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ी खबर। पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, तो यहां पर भी सावधानी बरतें, बड़ी खबर। मौसम के लिहाज से बात करें गुजरात की, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर यहां संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। बाद उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। तटीय कर्नाटक की बात करते हैं, तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का अनुमान बताया गया है, यहां पर भी मौसम में बड़ा परिवर्तन है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, और हिसाब से बड़ी खबर मौसम के लिहाज से हुई पांच आज की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मौसम के साथ कैसे आपको अलर्ट रहना है, यानी देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधानी बरतनी है, कहां आपको चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको कैसे अलर्ट रहना है, ये सारी जानकारी लेंगे अपनी।
2: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर बेहद भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज से काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, तेज हवाओं से नुकसान और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अनुरोध है कि सतर्कता बरतें और यथासंभव घरों में ही रहें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र कच्छ, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी से भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज से काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में मौसम के तीव्र बदलाव से प्रभावित होने की आशंका है, ऐसे में जरूरी एहतियात बरतना आवश्यक है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति रह सकती है। वहीं रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी, कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
1: तो क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, और जिन क्षेत्रों

भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वहां पर खास कर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो जान लेते हैं मौसम का पूर्वानुमान और जानते हैं कि देश के अलग हिस्सों में किस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या संकेत है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उत्तराखंड की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गांधी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार की बात करें, यहां पर भी अनेक जगह के बरसात के संकेत हैं। केरल, तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा में कई जगह बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत बताए गए हैं। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मराठवाड़ा की, तो यहां पर आप देखेंगे अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। संचार बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से, यानी मैदानी भागों में भी कुछ प्रकार से बरसात के संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई इलाकों में बरसात दर्ज की गई। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं कई जगहों पर, यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर बात करें तटीय कर्नाटक की, तो दक्षिण भारत के भी तमाम हिस्सों में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से अधिकतर स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बाद मैदानी भाग की अगर करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्यप्रदेश, पश्चिम मध्यप्रदेश में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बरसात दर्ज की गई। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बरसात दर्ज की गई है। दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई स्थानों पर बहुत तेज बरसात देखने को मिली है। इसके अलावा भी मौसम जुड़ी कई और अहम महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम का क्या असर पड़ रहा है तापमान पर, यानी तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, अधिकतम तापमान के क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, सारी जानकारी आपको देंगे हम तापमान के हाल के सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही 3.15 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान के कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तराखंड में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 3.15 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से

आधा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तापमान सामान्य से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहाँ देखने को मिला। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर की बात करें जहां पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में देखने को मिला है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर देखने को मिला। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और साथ ही साथ बात करें हम गुजरात की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं यहां की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान का हर इस प्रकार से देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग की अगर हम बात करें तो देश का सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया 18.2 डिग्री सेल्सियस के साथ, देश का सबसे कम तापमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नजर उस पर।

अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे।

आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं देश के तमाम मुख्य राज्यों और मुख्य शहरों में जो कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले चार दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले चार दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरूआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं कि लद्दाख में देश के आने वाले लद्दाख के लोगों में आने वाले चार दिन मौसम कैसा रहेगा। रविवार की बात करें कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम स्थिति में तापमान देखने को मिलेगा। बात करें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, रविवार सोमवार मंगलवार शुरुआत के तीन दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को फिर से बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें धर्मशाला में तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, जहां पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन यहां पर एक जैसा मौसम देखने को मिलेगा। चारों दिन यहां पर बादल छाए रहने के संकेत हैं और कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनती हुई नजर आएगी। पंजाब के अमृतसर के अंदर आने वाले चार दिनों में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री की, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों दिन मौसम एक समान है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की

संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आई उत्तराखंड के गंगोत्री में। इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन कई इलाकों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार की बात करें तो यहां पर मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं असम के काजीरंगा की। रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी। बुधवार को बात करें तो यहां पर कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास बनती नजर आएगी। फिलहाल 3 दिन यहां पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। बात करें तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से रामेश्वरम में मौसम का हाल, तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां पर मुन्नार की अगर हम बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की तो यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा बरसात के साथ। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिन बरसात से भरे रहेंगे। मुन्नार में भी इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान यहां संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें चित्रकूट में अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल न्यूनतम तापमान में आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। इस समय खेत में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई जगह पर बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। ऐसे में किन तरीकों में आपको बदलाव करना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहाँ तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यही सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जल भराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यही सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की

0: आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल की बुआई करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। इस समय की बात करें तो इस समय आप बैंगन की बुआई भी कर सकते हैं। किन प्रकार से आपको आगे बढ़ना है इसकी खेती में, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
1: ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की एक किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और किसान साथियों ने भारत के अलग अलग हिस्सों के मौसम के बारे में जानकारी को सुना, समझा और हमारे किसान साथियों को जानकारी दी हुई है कि किस जगह खासतौर पर पर्यटक स्थल जहां पर है उसका भी हमने मौसम आधारित जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। अब बुंदेलखंड की बात करें, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की जानकारी थी, अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों की जानकारी थी, अब आपको बुंदेलखंड क्षेत्र और खास तौर पर टीकमगढ़ की जो हमें रिपोर्ट मिलती है, मौसम आधारित जानकारी जो मिलती है उसको हम आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और तथा कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों में जल भराव की समस्या हो सकती है, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई बारिश के समय घर के अंदर ही रहें, यदि संभव हो तो खेतों में जाने से बचें, सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण ना लें। किसान भाई धान की फसल में खरपतवार निकालने का कार्य शुरू कर दें, इसके पश्चात संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का छिड़काव अवश्य करें। मिर्च और टमाटर की फसल में विषाणु रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, किसान भाई फसल का निरीक्षण करें, ग्रसित पौधे को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना है, जिससे पान की फसल में फुट रॉट रोग लग सकता है। इसके बचाव के लिए किसान भाई पान के बरेचा के आसपास पानी

एकत्रित न होने दें। किसान भाई नए फल बाग लगाने के पूर्व में खोदे गए गड्ढों में पौधे की रोपाई का कार्य शुरू कर देवे। अरबी में कंद गलन रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई कंद सड़न के विरुद्ध फसल की निगरानी का कार्य शुरू कर देवे। किसान भाई बेल की कटाई छटाई का पश्चात इसमें निकलने वाली नई शाखाओं में छल्ला विधि से कलम बांधे। बारिश का पानी पशुशाला में जमा होने ना दें। जानवरों को सूखी जगह पर बांधे। पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें। सप्ताह में दो बार पानी की टंकी में चूना डालें। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बरसात होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई गाय व भैंस के छोटे बछड़ों को सूखे स्थान पर बांधे। तो ये थी हमारी आज की मौसम आधारित जानकारी जो हमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी और जो हमने पूरे भारत की आपको मौसम आधारित जानकारियां और बहुत सारी जानकारी है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। उसका हमें सहयोग मिला है टीडी किसान चैनल से, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीना अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन खो और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गावती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं और वो गारी विधा में जो चीज दर्शाई जात गाई जात वह कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों, आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों, देर ना करत भाई सुनत है बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो। ई गारी खूं गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गारी इनखों।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गाड़ी अपन सब जन ने सुनी है, ई गाड़ी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनाते हैं अगले साथियों की गाई भाई गाड़ियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

0: बिल्कुल, बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। देखो दोस्तों, कितनों प्यारी जापन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी खूं गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथियों की और गाई भाई गारियन खो। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।
1: आमें।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी, हमें भूलना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनों ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। अब दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन खुजो बता देवे के आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय होगा है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई देवी। और कहना

0: चांद तू इतना मत चमक, ए चांद तू इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात भरी जिंदगी हम किया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो सोच लो के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करो, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जरा शब्द ले कहना है, हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना।
0: कल तलक तुम्हारी थी, कल तलक तुम्हारी थी, आज ये हमारी है। कल तलक तुम

Bahar.

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। शुभ कल कार्यक्रम मित्रों हम अपने श्रोता साथियों के लिए 2008 से लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शुभ कल कार्यक्रम आने वाला कल किस तरीके से हो, और खास तौर पर शुभ कल कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बातचीत को हम लेकर आते हैं और चर्चा भी करते हैं। अब वास्तव में लग रहा है हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को कि वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन ही है, क्योंकि बेमौसम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, कहीं सूखा पड़ना तो कहीं अत्यधिक बारिश होना, कहीं बाढ़ आना तो कहीं बिल्कुल मिट्टी ही नहीं गीली होना, ये सारे मौसम चक्र का बदलना, हवाओं का बदलना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो जलवायु परिवर्तन से होती हैं। एक बार फिर से पुनः हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जलवायु परिवर्तन का एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, क्यों बदल रहा है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है तो बात आती है हमारी खेती किसानी से जुड़ी बातचीत आती है, तो खेती में किस तरीके से हम रासायनिक पद्धति से जो हम खेती अपनी करते हैं उसको ना करके हम अपनी जैविक पद्धति से खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बनाकर किस तरीके से हम लोग अपनी खेती में अपने बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम केचुआ खाद बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से रासायनिक खादों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूरा मिश्रण होगा। जलवायु परिवर्तन जानेंगे, क्यों लोग कंपोस्ट खाद बनाना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि क्या है, बायोलॉजी को भी सुनेंगे, तो देरी करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे एक रिपोर्ट हमने बनाई है तो उस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, और इसके बाद हम आपको एक कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस पर तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी रिपोर्ट को।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

0: साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं।
1: हालात बहुत खराब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है?
0: जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ

0: किसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा।
1: इसका मतलब ये है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है वो तो बहुत जरूरी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई।
0: छह मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन,

बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है, और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुँच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है, वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए बड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने इस रिपोर्ट को सुना और समझा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा, किन किन कारणों से हो रहा, इस तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों सुनी। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से कम्पोस्ट खाद बना सकते हैं, क्या कारण है लोग नहीं बनाते हैं, क्या कारण है कम्पोस्ट डालने से अपने खेतों में हिचकिचाते हैं।

0: हमारे किसान साथी, ये तमाम प्रकार की बातों को हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है, और इसके बाद सुनेंगे साथियों बैरो भौजी को।
1: किसान

0: कलुगा, ओए कलुगा, जाने कितने कितने चलो यार भंसारी से मेरे इतना तसला भर के रख ला होगा मैंने, अब जाने कितने निकलेगा कन्वीस रोब में की खोटी रो।
1: अरे भाजी कहा कौन चिल्ला रही, कहा बात है,
0: कहा क्या रे लाला जू, कहा बजा रही, तुम्हें तो राम भी चार आंखें लग गई, देख तो मैं गोबर को तो तसला उठ बैठाई और कह रहे कहा बजा रही।
1: अरे भौजी जा कह रहे काय को चिल्ले आ रहा है।
0: अरे लाला जू तुम्हें भगया राम रियन मौका पे आ गए, मैंने एक जो तसला उठवा दू तो कल को जाने कितने कर गा भुनसारी से, भाई देखा तो मैं बाप हो तो।
1: अरे भौजी तू तो तसला उठवाने।
0: अरे हाउ लाला जू ये ना हमने कही नहीं है, तुम सही मौका पे आ गए, लगा दू हाथ ने काकोती में डाल रहा हूँ, अभी बुला भरो एक तसला और निकल जब भैंस काकोती, अब मैं कहा बताऊ लाला जू अपनी बेथा।
1: हाउ तो भौजी ऐसी कैसी बात कर रही, मैं तो उठवा देते हैं ले।
0: लेकिन लाला जी तुम निकल आए देखो मुझे तो बड़ी, चलो ठीक रहो मैं नदे आ रही थी जबकि तुम आ गए, मुझे बड़ो अच्छो लगो कि कम से कम उठ तो लाओ मेरे।
1: अच्छा भौजी एक बात तो बता कि तू घूरो तो दिखा तो नहीं है।
0: अरे लाला जी वजन वजन लग रहा हूँ, मैं बोल तो पा नहीं रही होंगी, मैं आ रही होंगी सोई बता रही
1: हूँ।
0: और लाला जी मैं एक काम और कर दो, अब आ गए होंगे तो काकोदी ने कुछ मेरी भैंस बंदी हैगी, बाखों में सानी करके रखे ही, बस सानी रख दो तुमने तो बक्की सीट लगे
1: सुनो कर दो लगो में।
0: कहा कह रहे लाला जी रखे दे तारे, लाला जी तुमने तो यह नोनी कही रख दो
1: देख लो भाई ऐसे करवा जाता अपने काम।
0: कहा कह रहे लाला जी।
1: अरे कछु नहीं भाई जा कह रहा हूँ रखे दे।
0: हाँ हाँ तो ठीक है लाला जी। ओ लाला जी देख लो लाला जू आ सुभीतरे घुस गए होते, जो नहीं मैंने कही थी सानी देख लो मैं पहले, हाँ सानी तो रख दी, चलो ठीक है लाला जू।
1: हाँ भाजी कहाँ है बता।
0: अरे लाला जू कहाँ घुस गए, कल का है वो होते।
1: अरे नहीं है वो अभी हाथों तो खेल में करेगा, भूर भूर सी कुछ समझाते नहीं है,
0: बापों में देखा होंगी आज बहुत खेला, खेल ही खेल चलो को 24 घंटा पढ़ाई के लाने नहीं सुनस, रुक जाओ मैं देखा। लाला जू धर रही थी भैंस को सानी।
2: हाँ भाजी धर तो दई थी खा ली बाने,
0: इतने जल्दी खा ले कि मैं गोबर डाल के नहीं आ पाई।
1: अब तो भोजी तनक होते हैं और डाल दे तो।
0: हाँ जा कहो कि मैंने डाल ही नहीं है, तुम पक्के काम चोर होंगे।
1: अरे भोजी तो ऐसी बातें करा, तुम डाल भी मुका बाने खा ले पूरी जब मैं कहता रहा।
0: चलो ठीक है अब कह रहे तो करें लेते में विश्वास। हाँ लाला जी तुम कछु पूछ रहे थे, बताओ कहाँ पूछ रहे थे।
1: भोजी बात जाए कि मैंने कुछ करते ही घूरे ना हो तो ते घूरो दिखाते नहीं है, तनक मनक डरो मैंने जासूची को उठा ली थी भोजी को गोबर कहे डेली दिन डर क्या होती तो जात कहा है जा पूछने थी मुझे।
0: कहा क्या है लाला जू मैं गोबर भरा थे वो को बताओ को भरा थे वो, वैसे मैं तो बहुत कम डारा थूंगी ये डाल दो तो हैगी
1: तो फिर तू घूरो का नहीं दिखा मैं तो जा पूछ रहा।
0: अरे लाला जू पहले तुम जो बताओ मैं भरत कू है तुमने अभी हल्के।
1: अरे भोजी जा मैंने कितने कही कू भरत है, मैं तो जा कह रहा हूँ कम दिखा तुम्हारा घूरो।
0: अरे लाला जू कम वो जा से दिखात के मैं गोबर नहीं गई तो डायरेक्ट मैंने कही नहीं है कि मैं एक आध बिना डायरेक्ट होते और पूरे की मैं खाद बना ली थी।
1: खाद बना ली
0: हाँ
1: कैसी खाद
0: ले ओ लाला जू तुम्हें पता नहीं है।
1: अरे मैं कहते जाना अगर जाना तो कहा पूछते
0: राम भाई लाला जू ये नहीं उमदा खाद बनन लगी।
1: अच्छा गोबर की बनन लगी
0: हाओ की मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं एक भैंस हैगी वही से इतना अच्छो खाद बन जाती कि मैंने को ना रासायनिक बालो कुन लाओ राम भाई
1: वो तो सो घूरे पे डाल रहा करे सो बन जाओ तो खाद।
0: अरे लाला जी बा में उतने फायदा नहीं रख जितने की बर्मी कम्पोस्ट में खेत का खाद में रहू थे
1: बर्मी कम्पोस्ट।
0: अरे लाला जी बर्मी कम्पोस्ट नहीं बर्मी कम्पोस्ट जाको केच हुआ खाद कत बर्मी वो इंग्लिश को हुए थे वो सब मेमोरी मोड़ा कह रहा थी मैं तो केच हुई खाद हैगी वहाँ तो केच का खाद बना लू मैं गोबर ज्यादा नहीं लगा फिर भी मैं तो ब्लड डाल देती हूँ एक भैंस हैगी कितने एक भैंस को।
1: अच्छा जाके खाद बन जाता
0: हाओ
1: तो केच हुआ केच हुआ रहते।
0: अरे लाला जी केच हुआ मोल लेने पर ज्यादा नहीं अपन कितने बनाया अब मैं ऐसे कैसा बता दूं तुम्हें मैं एक आदमी फिर विधि तो बताऊंगी कि अपन इनमें कैच को छोड़ दे तो वे काकोती हंगत हेंगे तो उन्हीं से काकोती फिर वहाँ खाद बन जा तुम तो जाना थोंगे कि कैच का अपने किसान में थूक देंगे।
1: जा तो मैं नहीं पढ़ी थी दो की किताब में कहानियाँ की कैच गहोत भी अपने किसान के दोस्त होते।
0: कहा कह रहे लाला जू 10 की किताब में वो तो आ रही 2 की क्लास से तुम कह रहे 10 में पढ़े। अरे लाला जू कहाँ पढ़ रहे थे तुम जब से।
1: अरे भाजी क्या सुना तो थे नहीं है तो दिमाग खराब हुआ कर दी थी
0: काय।
1: अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ कि 2 की क्लास
0: में। अच्छा अच्छा हाओ हाओ लाला जी 2 की में पढ़ी भाई तो मैंने कही कि मैंने पढ़ी थी उस जमाने में क्या साल हो गई मुझे कम से कम 40 साल है तो भूल गई।
1: अरे भाजी अब जा बता तो मैं तो कहती तेने कही गोबर तो फिर कम कैसे बना।
0: अरे लाला जी मैंने कही।

0: में गोबर ज्यादा नहीं लगा, नहीं गोबर डाल दो और जो भैंसन को वो निकल रहा अपना रो रहा पतोरो वो वही में डाल जाओ और वो में केचुआ छोड़ दो। सो अपनो जो 30 दिन में बन के तैयार हो जाओ थे, 30-40 दिन में तो ऐसी खाद उमदा बन जाओ, ऐसी खाद बन जाओ लाला जो खेत तो ऐसे लहलाए कि का बताए।
1: तो ई खाद को अपन कर का सकत काय काय में डाल सकत?
0: अरे लाला जी आप सब्जी लगाए हो तो सब्जी में डाल दो और खेती में हो तो खेती में डाल दो, चाहे कछू में डालो ई खाद को
1: तो बड़ी नोनी उमदा सी खाद है जीजा।
0: तो फिर लाला जी आसो तो जरूर ही बना जो।
1: हाँ वो जी तो फिर मैं अपनी एक गज्जा को गोबर अब खाद ही बनाओ कर है।
0: हाँ तो फिर मैं और काम कर लो अपनो
2: साथियों। अभी आपने सुना बैरो भौजी को जिन्होंने हमें कंपोस्ट खाद के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। साथियों उसी तरह बुंदेलखंड के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में लागत खूब लगाते हैं लेकिन पैदावार नहीं होती है, जिस कारण से आज भी किसान के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है और लाखों किसान डिफाल्टर हैं। तो आइए चलते हैं कुछ किसान साथियों के पास और पूछते हैं उन किसानों से कि वो कंपोस्ट खाद से अपनी खेती क्यों नहीं करना चाहते।

0: सबसे पहले आप अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है वृंदावन पाल।
0: वृंदावन पाल कहाँ से?
1: राधापुर से।
0: अच्छा वृंदावन जी, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आप जानते हैं, जानकारी है?
1: नहीं, वो नहीं है।
0: अच्छा, आपको यह इस तरह की जानकारी अगर उपलब्ध कराई जाएगी तो आप सुनेंगे उसको?
1: हाँ, सुनेंगे।

0: हमारा नाम है रविशंकर दुबे।
1: अच्छा रविशंकर जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आपको जानकारी है?
0: नहीं
1: नहीं जानकारी है?
0: नहीं।
1: रेडियो पर आप सुनना चाहेंगे इस तरीके की जानकारी आप?
0: हाँ हाँ।

0: नाम राजेश बंसाल, ग्राम जीवाड़ी।
1: कि कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानते हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है?
0: ना सर, तो मेरा नाम पहली बार सुना है।
1: तो अच्छा, आप जानता ही नहीं है?
0: हाँ सर।
1: जैविक खाद के बारे में?
0: ना सर, ना इसका भी पता नहीं है सर।
1: अच्छा, आप जानकारी चाहते हैं?
0: हाँ, चाहते हैं सर। भी चाहते हैं।

0: हमारा नाम लालाराम यादव, निवाड़ी से।
1: अच्छा लालाराम जी, हमारा एक सवाल है कि आप कंपोस्ट खाद के बारे में क्या जानते हैं?
0: ये कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिससे तो न किसी प्रकार की आदमी को नुकसान होता है, न फसलों को नुकसान होता है, न जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और बढ़ती है।

0: हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी वर्षा। और आज
1: करते हुए सुन सकता है वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाते हुए रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज
2: शुभ कर
3: एक चीज जानना चाह रहा है कि
4: हमारा नाम लालाराम यादव निवाड़ी जी।
3: अच्छा लालाराम जी, हमारा एक सवाल है कि आप कंपोस्ट खाद के बारे में क्या जानते हैं?
4: कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिससे तो न किसी प्रकार की आदमी को नुकसान होता है, न फसलों को नुकसान होता है, न जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और बढ़ती है, उससे कोई

0: बात करने वाले हैं कंपोस्ट के बारे में। जी हां श्रोताओं, कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां, बचा हुआ खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विघटन हो जाए। हमारी पारंपरिक खेती में कचरा, गोबर, जानवरों का मलमूत्र व अन्य वनस्पति जन कचरे को एकत्रित करके खाद बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा मिट्टी में जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते थे। इस प्रकार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता था एवं मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती थी। खाद बनाने का कच्चा माल सभी किसानों के खेत में ही उपलब्ध होने के कारण उसे बनाने में विशेष खर्च नहीं होता था। जैविक खाद फसल और मिट्टी दोनों के लिए लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। और अभी आपने इस चर्चाओं को सुना, लोगों के विचारों को जाना, खासतौर पर हमारे बौरव भाई जी ने भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से श्रोता साथियों को समझाया है, कंपोस्ट खाद के बारे में जानकारी दी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तमाम प्रकार के हमारे साथियों से उनके विचारों को सुना, जाना, समझा। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे। तो आने वाली फसल, क्योंकि इस बार पानी खूब दम से बरसो है वो, तो हमारे किसान साथी आगे की फसल की तैयारी अच्छी से हुई होगी, अच्छी पैदावार हुई होगी, पानी की समस्या नहीं आया है। लेकिन अब पानी की समस्या खत्म भई तो हमें दूसरी समस्या का आता है कि मिट्टी की जांच कराओ, संगे संगे उनको मिट्टी के संगे संगे नए बीजन को उपचार करवो, कौन से तत्व की कमी है, ये तमाम प्रकार की चीजें। और खासतौर पर कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को अगर अपने जान लो, समझ लो, सोच लो, तो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाकर अपने खेतन में डाल सकते हैं और वहां से अपनी उपजाऊ शक्ति जो नष्ट हो चली जा रही है वह तनक ठीक ठाक हो जाएगी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे। अगर नहीं आ तो हमें जो भी बता सकते हैं कि कहा नहीं है सहमत। अगर सहमत है तो हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर फीडबैक दें। हमारे नंबर हमें 92-19-20-77-49 और साथियों हमारा पत्र है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम शुभ कल से जाने की इजाजत। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

बिद गई आगिया बन लटकी अरे पद बेड़ में बिद गई आगिया बन लटकी थाली ए थाने अपनी लाई।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाए, कैसे बनाए, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खासतौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है, बिल्कुल।

0: बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जोरदार अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विवेचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्म में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज है, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार है, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार है। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यवसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य, चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल वे खूब कर रही है और खूब लोग उन्हें सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब है। सो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा, दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के इतने बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने

वाला था हमारे मखला चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपने इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है जो, और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा ट्वेल्थ पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे यूजी पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास बीए जनसंचार पाठ्यक्रम है और साथ ही बीबीए मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं, इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी है और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं और बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का

0: सर नहीं है, जो
1: बिल्कुल
0: प्रिंट
1: सही,
0: माध्यम है, रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है,
1: जी सर
0: तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर
0: इसमें कोई भी अंतर्वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को हैं। अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी हूं। और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहे, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें।
0: जी हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत है, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहां पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहां पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर अभी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूं, तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहां पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहां पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहां पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आप उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं, और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खासतौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूँ चाहत कि वे आए और जहाँ क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर, अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथ ही इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा, और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

होली है तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा के दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने की भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी हतो या नहीं देखो, तो कहे आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, फिर देख भी की तो बातें ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहतेंगे ब्योरे देखे आते ही, तो लड़की को देख भी की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: का नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं?
1: हाँ।
0: क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही हूँ।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही हैं?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी गोगन चौराहे डाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं में नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन कौन थे?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम होते?
1: वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सबके, तो ज्यादा जमीन नहीं होती, मजदूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए क्या करती?
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समय छोटे।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देखती हुई और कपड़ा मपड़ा देखती, 10-5 रुपए
0: तो मतलब
1: इस
0: तरफ से चला
1: रहा।
0: अच्छा, अगर हम आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन उनसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम कर रहे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो खेलने की बात हम कर रहे हैं, आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल आप कंची खेल रहा है, कहीं ये भी खेल रहा है, ये खेल खेलते तो चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा का
1: सावन का चपे का कलर।
0: अच्छा,
1: जो खेल रहा है
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेल में गीत ना, गीत सुनाओ।
1: नहीं जाना तो है ना, गीत नहीं।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते? पहले तो गा सुनियो
1: आप। अरे अनुभव लगा तो बड़ा पैर से कुछ भी नहीं आता,
0: इतने बड़ा पानी है आपको, लेकिन बड़ा पानी लगा था आपको। तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: सोलो नहीं गाते
0: आप? गाते? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बुरे हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कर रही थी,
0: तो नाम
1: को कल को अंगूरी ना हो, तो कल को पुष्पा ना हो, तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कहीं शादी हुई, कहीं की कोई की कहीं अपने अपने घर तो नहीं मिल
0: सकते। अगर मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते, मिल जाते,
0: इकट्ठे हो जाते
1: हैं, कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब देना मिला तो अच्छा लगता
0: है, अच्छा लगता है। अच्छा, अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पैरत काका थे, कपड़ा कौन कौन से चलते थे?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती से चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते, और फिर आके पहनते, और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते, और हम तो लखरा के गए तो ये पहन लेंगे, ये पहन रहा हूँ।
0: अच्छा जी, मतलब कोई अलग से नहीं है?
1: कोई अलग से नहीं है।
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी हमने तो ध्यान नहीं है बहन के, एक बीमार बनवाई भाई है कि
0: तो मतलब प्रश्न तो अंदाजा हुई है, जवाब जाना कभी शादी के बारे में?
1: नहीं जान सकते, जब हमारी शादी हो गई
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिस आपकी शादी हो रही थी उसको आपने देखा तो
1: है?
0: पहले से देखा तो
1: है? नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा? देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई घोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: बेटे से तो आते ही हमारे बाप बताइए 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, सब 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जमीन पे काम करते हमारे माता जी ने कही क्या मैं 500 रुपया दे दू मोड़ी के ब्याह करने, बोली तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 रुपया
0: सही बात,
1: तुम लोग 700 रुपया तो नहीं मिला।
0: अच्छा, जब आपकी ब्याह हुआ के बाद कितने आपकी ससुराल में? राधापुर में भाई है, राधापुर में ससुराल है। तो आपने पहली बार जब कौन कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैं जैसे पहले बनाते मंडप
1: पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप बो
0: अच्छा तीन दिन को भी आओ
1: तीन दिन आते
0: तो बात तीन दिन मिल रही थी
1: तीन दिन मिली रही थी
0: तीन बार
1: आते टीका को बना फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाऊंगा चढ़ो फिर
0: कहा
1: पेज में चढ़े एक किलो के खम बजा
0: एक किलो के पेज
1: ना हाँ एक किलो के पेज में खम बजा
0: बस
1: यही तो कह रहा थे पहले दे चढ़े थे
0: सही बात है तो फिर जब आप बताऊँ कहते हैं ससुराल में

0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आप क्या में नंबर की
0: हैं? दूसरे नंबर के नानी दादो।
1: ननन की शादी हुई?
0: हाँ।
1: अच्छा शादी के बाद?
0: बड़ी है तू।
1: बड़ी है। अच्छा तो फिर आपके एक एक का रस में वही मतलब कंकन छूटा
0: है? कंकन छूटे हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहते थे चले गए थे।
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
0: खिचड़ी बनाई थी।
1: आपने खुद बनाई थी?
0: मैं बना पाई थी, हमने जेठानी में बना गई थी।
1: अच्छा।
0: और चमचा से तैरवा गई थी
1: नाम हुआ था। तो आप
0: दोबारे में ओलेंडर बना दे।
1: अच्छा ओलेंडर बना दी। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो? तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिले तो हमें तो पैसा रखना पड़े तो चूल्हे में
1: हुआ देने। ये तो उल्टा नहीं हुआ
0: के पहले देता ही है तेल।
1: अच्छा।
0: अभी भी देता हूँ रन के।
1: हाँ।
0: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सास बहू से सास लेते हुए पैसा।
1: अच्छा।
0: चाहे दस दर हो चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ बना दी लेकिन वो सास ले और अंडा तो वही रखत बहू तो बेबी सास ले।
1: अच्छा
0: जितने सास ना हो तो जेठानी में
1: आओ बना बोलते ले। तो जैसे पहले एक अबे एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुला?
0: नहीं हमारे समय में नहीं
1: खुला जूड़ा नहीं खुला। नहीं अच्छा आपकी तरह ना
0: छोड़ा खुला तो जो
1: छोड़ा
0: जो छोड़ा
1: हाँ तो ये भी पैसा
0: सास कर सकती है
1: खोल सा खाती के
0: हाँ खोल सा खाती सास
1: इसको काम हाथ भूत तो मतलब
0: जब सास दे में आ गया तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो ये कछु महत्व
0: कछु महत्व जी नहीं।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते तो कछु दे
1: समझ नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिलकर
0: जेठानी के संग करा तो लड़ाई क्या होती?
1: कभी लड़ाई नहीं हुई? आप
0: नहीं हमारी दी है जेठानी ना सास से भाई कभी ना
1: काय नहीं होती। आप सीधी हटे क्या दो जने
0: भी दो एक से आते मिलकर कर लेते बस सबने कर सहन हो बस सब अलग अलग हो।
1: अच्छा और तो सासरे में क्या काम होती आपकी? खेती
0: खेती होती रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ होती रात ऐसे खेती होती से रात चला कर रखते।
1: अच्छा और जैसे खेती की आपने बात करी है कि तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकती हो सवेरे चार बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं आप?
0: चार बजे उठ जाते
1: हैं
0: चार बजे से पी सकते से पाँच छह किलो नाच पी से देते
1: पाँच छह किलो रोज पी से
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती इतना ही
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
0: हो चार बजे से भी पी सकती
1: संग पी सकती
0: है हाँ करो संग करो अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की तीसरी बार का काम
0: गोबर गोबर डालते
1: कितनी गाय भैंसे होती आप?
0: बोला दस बारह गायें होती।
1: अच्छा
0: गोबर गोबर डालते झाड़ा झूरी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती है एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
0: तो फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते सो घंट चल आते दिन भर।
1: अच्छा वहाँ से वहाँ नहीं आते
0: बेलन से
1: बेलन से बेलन से चलते
0: घर में नहीं आते लोग
1: सो
0: वो चलाते रहते कब हम साथ बैठा भी चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है बताने का होती। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है? हमारा छह लड़का
1: छह लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है
1: लड़की नहीं आई को तो अपने
0: लड़का को तो पढ़ाओ परेशानी होती से कुछ नहीं पढ़ा पाँच पाँच पढ़ा गई स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हो गई?
0: हाँ सबकी हो गई सब नाते में तो लड़की हो गई।
1: अच्छा नातिन की भी हो गई नाती है
0: छह नाते है छह नातने हैं।
1: अच्छा तो बोला आपकी को मतलब बिला बड़ा परिवार है?
0: हाँ तो छह लड़का है तो दो दो है सबके।
1: अच्छा
0: और एक के चार है बड़े के तीन मोड़ी है
1: तो मोड़ी
0: तो आप बिरोबर हो गए तीन मोड़ी के तो मोड़ी मोड़ा होगा तो एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंगले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा होगा
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको अच्छा लगा था ये त्योहार पे हुआ सब जने आ रहे थे तो अच्छा लगा था ये ना तो आप सुनाता नहीं खेलती हो
0: याद
1: करने आते बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही
0: हैं आप? 20 साल से जा रहे हैं।
1: जैसे आपने पढ़ाई पास तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लगी थी मतलब?
0: पहले उन्हें इन्हें चार जमन के कागज दे थे घर को सो सब में 200 रुपए गेम लगते।
1: अच्छा
0: सो

0: सब जाना ने कई 200 रुपया में का खा रहे हैं निकलने हाँ हमें निकलने सुख है मेरी चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकता
1: है
0: चलो 350 में लगते हैं 200 रुपया
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर बोले लादा हम दे दे रू करें तो मैं 2-4 पे दिन आज खा भी के गाँव में गज्जा का करा फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पे दिन आज हम पानी वाले आते हैं तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अरे भी अरे छोड़ दा हम ना पाना चला ही रहे
1: हैं
0: जब से हम ना गाड़ी कम करें से पानी भर
1: इनको
0: बोला खाए भी देखी परेशानी से जैसे नहीं तो जो दे तो सकते खाए नहीं करते तो कुछ रहे
1: सही बात
0: है तो तीन महीना अन्य
1: 2.5 हजार
0: 3.5 हजार हमारे 1500
1: धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव आ रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो
0: हम जो खेती किसानी सीखी और जाड़ी कर नहीं कर सकता
1: आपको का लगा के पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें
0: चौपड़े में तो महत्व जो देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिखा है
1: लेकिन आप सोचते हो ना पढ़ाई जरूरी है जीवन के लिए
0: जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे कि क्या सोच रहे हैं बताओ
1: सही बात है लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
0: है लेकिन मैम मिल रहा है पहले नहीं मिला
1: हाँ पहले नहीं मिला फिर लेकिन अब मिल रही तो अब तो रवि के नाम में पढ़ाई चाहिए है ना बिल्कुल तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाना चाहिए कि नहीं
0: अपनी जो बच्चा बना हुआ है सवा खाप करी नाती नाती पढ़े
1: तो पढ़ाना चाहिए
0: हाँ सब पढ़ा रहे
1: चलो बढ़िया माँ आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताई बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अपनो रेडियो अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.45 दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती कैसो इनको जीवन रहो है वो और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में इनको बचपन कैसो बीतो है वो बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे उते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी। पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो घर को काम ही देखने आ है वो। लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावें। ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़तो। तो देखो आप अपनो समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछू भी हमें भेज सका थेंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चलत चलत सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और किसान साथियों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इस बार चूंकि किसान पर हमारे किसानों की जो फसल की बुवाई वो बहुत पीछे हो गई है और बहुत सारे किसानों ने वो भी नहीं पाई है, क्योंकि जून से लगातार इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण हमारे किसान साथियों ने अपने खेत में बहुत ही कम फसल लगाई है, जिससे हमारे किसानों का भारी नुकसान भी हुआ है। और खुशी भी इस बात की होगी कि इस बार बारिश बहुत अत्यधिक होने से हमारे

0: किसान साथियों के लिए फसल में काफी मुनाफा होगा, लेकिन क्या करें, ये मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, इसको कौन रोक सकता है। प्रकृति के साथ हम लोग जो निरंतर बदलाव देखने को मिल रहा है, छेड़छाड़ी कर रहे हैं, इससे बदलाव जो हो रहा है उससे जो खामियाजा हमें और आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सभी को भुगतना पड़ रहा है। खैर, लेकिन एक पहल है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। इसी को लेकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मशरूम और खासतौर पर जो हमारे खेतों में उगाई जाने वाली चीजें रहती हैं उससे किस तरीके से जो फायर की जो कपड़े रहते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके का स्टार्टअप है ये, भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किस तरीके का स्टार्टअप, इसको हमें सीखना और समझना होगा, इससे किसानों की आर्थिक मदद होगी और नई चीज हमारे देश को मिलने जा रही है। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा को।
1: जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और डीओ टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से, और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज हाई परफॉर्मिंग वेयर, वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसे मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्टेन से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज करा है, और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं, तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट मिलते हैं, जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं, तो उसकी वजह से आप सब्जी जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी।
2: बिल्कुल। तो आपने कहा मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में?
1: तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना, मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायो बेस्ड भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज ऑल्सो वेरी पोल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस पर काफी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल।
2: जी, तो आपने यहाँ पर सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उसे कैसे बेहतर होंगे।
1: पहली बात, जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस्ड सिंथेसाइज होती है, उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो बायोडिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है, उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है, हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक वेस्ट में बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है। और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग इम्पोर्ट रिलायंस।
2: कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसीलियम को यूज करके और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं?
1: हम जो मशरूम, जैसे हमें माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, एक जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो हम जो यूज कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। तो हमारी जो जड़ उग रही है फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है जो हमने अचीव कर ली है 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो

0: एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं कुछ माइसिलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे, तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, वो एक तरह से हमारे माइसिलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसिलियम ग्रो हो जाता है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस फर्दर प्रोसेस करते हैं जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे, एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वेयर।
1: जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं है, बाहर से खरीदने पड़ते हैं, तो किस तरह की समस्याएं जो है, मतलब ऑब्वियसली डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये,
0: क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है, हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं, तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग, तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं, हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं, तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए, हमें कुछ भी बाहर से लेना ही पड़ रहा है, और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स पे असेंबली हो रही है, हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं, देयर आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर, तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है, बायोफाइबर विच इज इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज, तो जब हम ये बना लेंगे एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है।
1: तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीजें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो किस तरह की जो चुनौतियां वो खत्म हो जाएंगी?
0: तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है, सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपन्स, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को, और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी, और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज करना हो तो वो हो सकता है।
1: तो जो एक फायर रिटार्डेंट होते हैं उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे?
0: तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल दैट आर आउट देयर, उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं, तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक होता है, सूट होता है अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंटी लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं, तो वो डिग्रीज शुरू होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाते हैं फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक साल में खड़े रह रहे हो, ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आए, और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफी सुविधा रहे और वो अच्छे से अपना काम कर पाए बिना खुद को हानि पहुंचाए।
1: वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट है क्या हम इनके बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, बाकी जगहों पर भी यूज होता है, क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रहे हैं?
0: जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव बेयर है, विच इज प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टन्स, सीट, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं उनके भी ऐसे कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो निगेट हो जाए। तो इसकी सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, जैसे डिफेंस तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी

0: रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या बेस्ट के फॉर्म में, कवर ऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में, ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग से इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है, हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की, और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है।
1: क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री बेस से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे फार्मर्स हैं क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा।
0: तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोअर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे जो फार्मर्स हैं, उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत जरूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपने प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर, तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो क्योंकि उनके लिए वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं, जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज को बेच के हमें।
1: यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं, बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है, हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं, तो हम इसमें ज्यादातर पराली और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज करते हैं, जो कि हम इस सबका एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उसमें हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं।
1: क्योंकि यहाँ पर आपको बताने से समझ में आता है कि काफी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नजर आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी।
0: तो जैसे हमारा ध्येय यही है इस पूरे प्रोडक्शन में भी, हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जो हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है, जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं बिकॉज उसका यूज नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी जो एनवायरमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं, तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहां भी वेस्ट होता है वहां पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN की SDG गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उससे भी अलाइंड है, 12 हमारा मेजर गोल है विच इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड है, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं, तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं।
1: तो आपकी जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है, इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहां तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रहे हैं मशरूम माइसीलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगे मार्केट में इसकी।
0: तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं, जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड

0: इसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सके।
1: जैसे मशरूम ऐसी भी नहीं, अभी आप इसको फिर लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नजर आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगे?
0: अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक, लेकिन जब हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी, तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे, जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की जरूरत है उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे, और इसमें हम जब जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी, तो ये म्यूचुअल बेनिफिशियली बेनिफिट के तौर पर हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें जरूरत है हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं, जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करे और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पर उन्हें जॉब भी मिल सके जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे जिससे कि हम एक इकोसिस्टम बना सके जहां पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में।
1: अभी तो ये लैब स्केल पर है लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे, और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी?
0: हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी है, जैसे हमारा जो फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे, फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का, जैसे ये दोनों चीजें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीजें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट, और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज सस्टेनेबल, जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट मिले हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर, तो जितना भी मार्केट है इट्स $1 trillion मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है, सिंथेटिक से पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है, तो क्योंकि 360 degree इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टुवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीजें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज को प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे, पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफकोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल, हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज होगी और उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज सिद्ध होगी।
1: नहीं सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है,
0: तो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं, तो भारत सरकार की जितनी नीतियां हैं आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स एस्टैब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए, तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि आप लोग कुछ जीते, वो इवन ग्रांट्स देती हैं, अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है, तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस एक साल के

अगर वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए, हमें काफी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटर है अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है। ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम IDEX के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है। उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज्यादा सहायता मिली है, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं

0: तीन तरीकों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है हमें आईडी कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि आरएनडी जब तक हम सैंपलिंग पूरी कर लें, पहला एमवीपी बना लें, तब तक विच इज मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और एनकरेजमेंट मिले। तो हम और भी चीजों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाए।
1: तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये स्टार्टअप?
0: देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चर वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइक्लिंग इट और रिसाइकलिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपए किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपए किलो के बीच में। अब हम उसको यूज करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे।
1: तो अगर मैं आपसे आपका विजन विजन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चलेंगे?
0: तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहां कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीजों से चीजें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स, जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है, उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे, हमारा यूएसपी यही है। और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सके कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है।
1: और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज करें, तो क्योंकि हमारे भारत को अभी इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है।
1: और मैं यही कहूंगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोच रही कि देश को किस चीज की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और मिशन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने इस चर्चा को सुना, और इस चर्चा को जो चूंकि हमने कार्यक्रम जो उठाया है वो हमारी डीडी किसान से हमने इस कार्यक्रम को लिया गया है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं कि इस तरीके की जानकारी उनके सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की हम लोग जो पहल कर रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचेगी, किसान साथियों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो इसका उनको लाभ मिलेगा। वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पर। पता हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। फोन नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। दोस्तों, आज आसपास कार्यक्रम में अपन सुने एक सामाजिक कवर स्टोरी खो। और दोस्तों, एक के संगे संगे पहला सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत खो, और गीत के बाद फिर सुने अपन ये स्टोरी खो। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

हाँ देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो और ये गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे अमोल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में सुनाते हैं एक बढ़िया सी सामाजिक स्टोरी को। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ये वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। दोस्तों आइए सुनते हैं एक लघु कथा, कहां गया शिवलिंग। एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करने निकले, साथ में उनके पास जितना भी धन था उसको भी ले गए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना तो था नहीं। जब वह इस धन को सुरक्षित रखते तीर्थ यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे बहुत भारी भीड़ थी। साधु महाराज को गंगा स्नान करना था, परंतु उन्हें अपने धन की चिंता सताने लगी। इतनी भीड़ में यदि अपने धन को गंगा के किनारे छोड़ते हैं तो उसे चोरी होने का डर है। उनके मन में एक उपाय आया और उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। गंगा के किनारे रेत ही रेत थी। साधु महाराज ने उस रेत में अपने

लगा दिया और उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, जिससे उन्हें जगह की पहचान बनी रही। इसके बाद साधु महाराज निश्चिंत होकर स्नान करने चले गए। परंतु जब वह स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा उस स्थान पर असंख्य शिवलिंग बने हुए थे और साधु महाराज किंकर्तव्य मूड रह गए कि अब इस विशाल शिवलिंग समूह में वो शिवलिंग कहां से ढूंढें जिसके नीचे उनका धन छुपा है। वह अपना सिर पीटते रह गए। लोगों ने बिना सोचे समझे रेत पर शिवलिंग बना दिए। सोचा होगा कि यह भी एक प्रथा है। ऐसा ही है यह संसार, लोग धर्म के नाम पर बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हैं, चाहे उससे किसी का अहित ही क्यों न हो। इसे ही कहते हैं गतानुगति को लोकः। दोस्तों, इस लघु कथा की लेखिका थी सविता शर्मा नोएडा से, और दोस्तों इसको आवाज और म्यूजिक से सजाया है आपके रेडियो साथी मोतादीन कुशवाहा जी ने।

हाँ देखो दोस्तों, जहाँ अपन सब जन ने स्टोरी सुनी और ई स्टोरी से अपन को कछु सीख सोले ने। अब दोस्तों एक के संगे संगे बिलादरी से अपन ई स्टोरी को सुनना है। आप बोल रहे कह रही है कि माता दिन भैया मनोरंजन को बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, मनोरंजन के लाने हमें आप सब जन को ध्यान है। सो मनोरंजन में सुना थे अपन एक बढ़िया से गीत को, लेते गीत को आनंद।